हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये राग डीटीएच चैनल। संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है मन्ना डे के स्वर में। बोल तहिते आयो शरण सवेरे।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। लीजिए सुनिए आलोक गांगुली के स्वर में ब्रह्मानंद की ये रना, सुनो सुनो ध्यान से प्यारा।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग अहीर भैरव में ख्याल गायन. आज के कलाकार हैं कुमार रॉय. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं रुद्र नारायण कल्याणी.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen to a khayal in the rag Ahir Bhairav. Our artist is Kumar Roy. Accompanying our artist on the tabla is Rudra Narayan Kalyani.

0: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं तीन ताल में तबला वादन। आज के कलाकार हैं गणेश चंद्र दास। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे हैं हिरणमोय मित्रा।
1: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनीटाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल। लिसन टू अ तबला रिसाइटल इन तीन ताल। आवर आर्टिस्ट इज गणेश चंद्र दास। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द हारमोनियम इज हिरणमोय मित्रा।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप तीन ताल में तबला वादन सुन रहे थे। आज कलाकार थे गणेश चंद्र दास। आज आपके साथ हारमोनियम पर साथ दे रहे थे हिरणमय मित्रा। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a tabla recital in Teen Taal. Our artist was Ganesh Chandra Das. Accompanying our artist on the harmonium was Hiranmoy Mitro. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है उस्ताद फारूख लतीफ का सारंगी वादन. आइए सुने राग गुह कल्याण. आलाप के पश्चात द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है. इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी आर प्रेजेंटिंग सारंगी रिसाइटल बाय उस्ताद फारूख लतीफ. लिसन टू राग गोरख कल्याण इन विच यू लिसन आलाप फॉलोड बाय द्रुतगत set to 3 times.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: ये था राग गोरख कल्याण। तबले पर आप

0: के साथ संगत कर रहे थे पंडित राजेंद्र अंतरकर। कार्यक्रम को जारी रखते हुए उस्ताद फारूक लतीफ अब सारंगी पर प्रस्तुत कर रहे हैं राग मेघ। आलाप के पश्चात मध्यलय गत एक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है।
1: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
0: दैट वॉज राग गोकल्याण। यू आर लिसनिंग ऑन सारंगी बाय उस्ताद फारूक लतीफ। अकंपनिंग हिम ऑन तबला वॉज पंडित राजेंद्र अंतरकर। इन कंटिन्यूशन ऑफ प्रोग्राम उस्ताद फारूक लतीफ प्रेजेंट राग मेघ, आलाप फॉलोड बाय मध्यलय गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल।

0: ये था राग मेघ, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे उस्ताद फारूख लतीफ का सारंग वादन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अजीत पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: दैट वाज राग मेघ। With that, we conclude Sarangi recital of Ustad Farooq Lateef. Accompanied him on tabla was Ajit Pathak. This was the contribution of AIR Mumbai.
1: This is Ragam DTH channel. Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहाग. आलाप के बाद विलंबित और द्रुतगत क्रमशः तीन ताल में निबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio. We now present a sitar recital in Rag Bihag by Pandit Debu Chaudhary. The alap is followed by vilambit and drutgat set to teen tal. Pandit Debu Chaudhary is accompanied on the tabla by Rafiuddin Sabri.

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया राग बिहाग सुन रहे थे, और लीजिए अब सुनिए धुन राग मांड। तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साहब ने।
1: यू आर लिसनिंग टू राग बिहाग प्लेड ऑन द सितार बाय पंडित देबू चौधरी। लिसन नाउ टू धुन राग मांड। द अकॉम्पनीमेंट ऑन तबला इज प्रोवाइडेड बाय रफीउद्दीन साबरी।

0: अभी आप पंडित देबू चौधरी का सितार पर बजाया धुन राग मांड सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी रफियुद्दीन साबरी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू पंडित देबू चौधरी प्लेइंग धुन राग मांड ऑन द सितार। ही वाज अकंपनीड बाय रफियुद्दीन साबरी ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आइए सुनते हैं श्रुति गोखले का गाया राग पटदीप. मध्य लय की बंदिश झपताल में है. बोल हैं कैसे कहूं मत जाओ विदेश. द्रुत बंदिश एक ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं तू है कली जो खिली मोरे अंगना.
2: Listen to Hindustani classical vocal by Srimati Shruti Gokhale presenting Rag Patdeep, Madhyalay Bandish.

सेट टू झप ताल, बोल कैसे कहूं मत जाओ विदेश, एंड द्रुत बंदिश सेट टू एक ताल, बोल तू है कली जो खिली मोरे अंगना।

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। अभी आप श्रुति गोखले का गाया राग पटदीप सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे मिलिंद जोशी, हारमोनियम पर थे प्रकाश वगळ। आइए अब सुनते हैं श्रुति गोखले का गाया राग पुरिया धनाश्री। विलंबित बंदिश तिलवाड़ा में निबद्ध है, बोल हैं अरे मन काहे। द्रुत बंदिश तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं देहो नित मोहे।
1: This is Ragam 24/7 DTH, anytime Indian music. You are listening to Rag Patdeep by Srimati Shruti Gokhale. Accompanying her on tabla was Milind Joshi and on harmonium, Prakash Vagal. Continuing the concert, now listen to Rag Puriya Dhanashri by Srimati Shruti Gokhale. Vilambit Bandish set to Tilwara, bol Are Man Kahe. Drut Bandish set to Teen Tal, bol Deho Nit Mohe.

अभी आप श्रुति गोखले का गाया राग पुरिया धनाश्री सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे अनुतोष देघारिया और हारमोनियम पर थे अनिरुद्ध गोसावी। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।

0: ये रागम डीटीएच चैनल है, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकल बाय श्रीमती श्रुति गोखले। अकंपनिंग हर ऑन तबला वाज अनुतोष दिघारिया एंड ऑन हारमोनियम वाज अनिरुद्ध गोसावी। दिस प्रोग्राम वाज कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई फॉर रागम 24/7 डीटीएच। Anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सुनिए राग जोग पर सरोद वादन. कलाकार हैं सायन मुखोपाध्याय. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अरिंदम चक्रवर्ती. तो लीजिए प्रस्तुत है राग जोग पर सरोद वादन. कलाकार हैं सायन मुखोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This evening we present Hindustani Instrumental Recitals. Listen first to a sarod recital in the rag jog. Our artist is Shayan Mukhopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Arindam Chakraborty. Listen now to the sarod in the rag jog. Our artist Shayan Mukhopadhyay.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग जोग पर सरोद वादन सुन रहे थे। कलाकार थे सायन मुखोपाध्याय। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अरिंदम चक्रवर्ती। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग बिलासखानी तोड़ी पर गिटार वादन। कलाकार हैं भास्कर प्रसाद मुखोपाध्याय। आपके साथ तबले पर हैं इंद्रनील भादुड़ी। तो लीजिए प्रस्तुत है।

0: राग अभिलाष खानी तोड़ी पर गिटार वादन, कलाकार हैं भास्कर प्रसाद मुखोपाध्याय।
1: यू वर लिसनिंग टू अ सरोद रिसाइटल इन द राग जोग। आवर आर्टिस्ट वॉज शायोन मुखोपाध्याय। अकंपनिंग आवर आर्टिस्ट ऑन द तबला वॉज अरिंदम चक्रवर्ती। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। कंटिन्यूइंग द कॉन्सर्ट वी नाउ प्रेजेंट अ गिटार रिसाइटल। Listen to a guitar recital in the rag Bilash Khani Todi. Our artist is Bhaskar Prasad Mukhopadhyay. Accompanying our artist on the tabla is Indranil Bhaduri. Listen now to the guitar in the rag Bilash Khani Todi. Our artist Bhaskar Prasad Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग बिलास खानी तोड़ी पर गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे भास्कर प्रसाद मुखोपाध्याय। आपके साथ तबले पर थे इंद्रनील भादुड़ी। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू अ गिटार रिसाइटल इन द राग बिलास खानी तोड़ी। आवर आर्टिस्ट वॉज भास्कर प्रसाद मुखोपाध्याय। Accompanying our artist on the tabla was Indranil Bhaduri. This program

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत प्रस्तुत है रविराज शंकर का बजाया बांसुरी वादन. सबसे पहले आप राग विभास प्रस्तुत करेंगे. मध्य लय बंदिश रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र.

अभी आप सुन रहे थे रविराज शंकर का बजाया बांसुरी पर राग विभास। आइए अब सुनते हैं इन्हीं का बजाया राग श्याम कल्याण में एक रचना जो कि रूपक ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं शीतल प्रसाद मिश्र।

ये है रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे रविराज शंकर का बजाया बांसुरी पर राग श्याम कल्याण। आइए अब सुनते हैं सुश्री लक्ष्मी शंकर का गाया राग माज खमाज में छोटा ख्याल। बोल है आली री मोरा मनहर लीन हूँ, जो कि तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आप सुन रहे थे सुश्री लक्ष्मी शंकर का गाया माझ खमाज में छोटा ख्याल। यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सौजन्य से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन. कलाकार है सुरेंद्र शंकर अवस्थी. राग है सावनी नट. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल है सब मिल गाओ. द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं आज सब मिल मंगल गाओ. संगत कलाकार हैं तबले पर स्माइल दद्दू खां, सारंगी पर समत खां. दिस इज रागम 24/7 एन एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी. दिस रेंडेशन कमेंस विद अ राग सावनी नट. द अकंपनीमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय स्माइल दद्दू खां ऑन द तबला एंड समद खां ऑन द सारंगी.

आप सुन रहे हैं ख्याल गायन, कलाकार हैं सुरेंद्र शंकर अवस्थी। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे सुरेंद्र शंकर अवस्थी से राग छाया नट। एक ताल में निबद्ध विलंबित ख्याल के बोल हैं आज बधावा गाओ। द्रुत ख्याल तीन ताल में निबद्ध है जिसके बोल हैं झनन झनन झन झनन बाजे बिछुआ। कंटिन्यूइंग द वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी, यू विल लिसन राग छाया नट।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में ख्याल गायन। कलाकार थे सुरेंद्र शंकर अवस्थी। संगत कलाकार थे तबले पर यदुनंदन गोस्वामी और सारंगी पर समत खां। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी वोकल रिसाइटल बाय सुरेंद्र शंकर अवस्थी। द अकम्पनीमेंट वॉज प्रोवाइडेड बाय यदुनंदन गोस्वामी ऑन द तबला एंड समत खां ऑन द सारंगी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग गुर्जरी तोड़ी. तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट फॉर यू अ सितार रिसाइटल बाय प्रतीक चौधरी. ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय रफीउद्दीन साबरी. प्रतीक चौधरी फर्स्ट प्रेजेंट्स राग गुर्जरी तोड़ी.

0: अभी आप सुनिए प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग। तबले पर आपकी संगति की है रफीउद्दीन साबरी ने।
1: यू जस्ट हर्ड राग गुर्जरी तोड़ी। प्रतीक चौधरी कंक्लूड्स सितार रिसाइटल विद राग शुद्ध सारंग।

0: अभी आप प्रतीक चौधरी का सितार पर बजाया राग शुद्ध सारंग सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: विद राग शुद्ध सारंग वी कम टू द एंड ऑफ द सितार रिसाइटल बाय प्रतीक चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है भारतीय संगीत का रागम DTH चैनल. हर दिन हर पल भारतीय संगीत. संत तुलसीदास की ये रचना प्रस्तुत है. स्वर है मलय बनर्जी का, बोल है विनती सुनो मेरी.

आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए अब सुनिए उषा मंगेशकर के स्वर में संत रैदास की रचना, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी।

संजीवनी बहलांडे के स्वर में आइए अब सुना जाए संत मीराबाई की ये रचना, तुम मोरी राखो लाज हरी।

संत कबीर दास की यह रचना प्रस्तुत है मंगल मिश्रा के स्वर में। बोल तेरी यारी में यार मजा यही पाया।

हर पल हर दिन भारतीय संगीत का ये रागम डीटीएच चैनल है। सविता बनर्जी की आवाज में आइए सुनते हैं गुरु नानक की रचना, बोल है एक सहारा है तुम्हारा।

आप सुन रहे हैं रागम डीटीएच चैनल, हर पल हर दिन भारतीय संगीत। लीजिए सुनिए शंभू लहरी और चंचल लहरी के युगल स्वरों में कृष्णदास की ये रचना, बोल जब ते श्याम।